आकाशवाणी सुने वालों, भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर फ्रेंड जाइडियो, वेलकम यू टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया, विच कम्स टू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू ब्रिंग यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ यस्टरडे, एंड सो वी इनवाइट यू एंड योर फैमिली टू स्टे ट्यून्ड टू द वॉइस ऑफ गयाना as we begin this melodious joyride, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. And it's about time that we put the show on the road. Let's go!

0: पन्नी काले की पतरानी हो गई, देख पतरानी हो गई।
1: दुनिया ना तेरे बाप की ना मेरे बाप की, मैं सारे को रानी बनूंगी काले बाप की।
0: अरे दुनिया